सुना है लोगों से खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूँ मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

0: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
1: डियर साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस।

0: एमबीबीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6378024475। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6378024475। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकर हाजिर रहूंगा थोड़ी देर में आपका मनपसंद कार्यक्रम हल्लू फरमाइश। चलिए दोस्तों कार्यक्रम का करते हैं आगाज। जुराज पहली फिल्म और पहला गाना हमारे पास आया है मोनिका मीना जी की तरफ से। मोनिका मीना जी ने हमें कॉल किया है सवाई माधोपुर से, सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गीत।

0: शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
0: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
2: दोस्तों 10:08 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों नाम बताना चाहूंगा उन सभी श्रोतागण के

0: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का।

0: का सरताज है।
1: दोस्तों 10:09 का सब हो चुका है। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा उन सभी श्रोताओं के नाम जिनकी फरमाइश से अब तक हमारे स्टूडियो में दर्ज की जा चुकी है। दोस्तों पहली फरमाइश हमारे पास आई है मोनिका मीना जी की सवाई माधोपुर से, दूसरे नंबर की फरमाइश चौधरी जी की श्री महावीर जी से, तीसरी फरमाइश हमारे शहनाज खान जी की संजय कॉलोनी गंगापुर सिटी से, चौथी फरमाइश से गुलशन खान गंगापुर सिटी से, पांचवी नंबर की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है आरबी गुजर मोतीपुरा से, छठे नंबर की सुहेल सैफी जी की और सातवें नंबर की फरमाइश दर्ज हुई है तुलसीराम मीना जी की पीलूखेड़ा गांव से, आठवीं नंबर की फरमाइश विनीता मीना जी की। दोस्तों इसी क्रम को बनाए रखें, नवे नंबर की ध्रुव मीना जी की महूगला से, दसवें नंबर पर योगेश जांगिड जी विमेत्रा छत्तीसगढ़ से, ग्यारह नंबर पर सादाब खान फरुखाबाद यूपी से, बारह नंबर पर बाबू खान गंगापुर सिटी से, तेरह नंबर पर राजू लापानिया जी आगरा लखनिया से, केशव शर्मा जी जम्मू कश्मीर से और 15 नंबर पर ठंडीराम गुजर जी और 16 नंबर पर भूटा सिंह मान नांदेड़ तलवंडी बठिंडा पंजाब से। दोस्तों क्रमबद्ध तरीके से आप सभी की फरमाइशों को पूरा किया जाएगा, बने रहे मेरे साथ 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि।

0: स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
1: डियर साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ।

0: एफडीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6378024475। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6378024475। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
3: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस। रेडियो डीएस
4: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। दोस्तों कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है श्री महावीर जी गंगापुर सिटी से चौधरी जी की। सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गाना।

0: दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त ऋषि मीना की तरफ से DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। OTP पूछना, फर्जी बैंक कॉल, KYC अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, QR कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झांसे से सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना OTP, ATM पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को न बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त इशी मीना एवं DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।

दोस्तों 10:21 का समय हो चुका है। तीसरे नंबर की फरमाइश हम लेकर आए हैं सहनाज खान जी की तरफ से। सहनाज खान जी ने हमें कॉल किया है संजय कॉलोनी गंगापुर सिटी से। सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये बेहतरीन सा और प्यारा गाना।

0: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
1: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और
2: दोस्तों 10:28 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ टून कर 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर फिलहाल कार्यक्रम सुन रहे हैं। लो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास है, ये गुलशन खान जी की गंगापुर सिटी से सुनते हैं इनकी फरमाइश का ये गीत।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 10:34 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है आरपी गुजर जी ने। आरपी गुजर जी ने हमें कॉल किया है मोतीपुरा गांव से। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है सोहिल जी की। सोहिल जी नाम एक ओल की आए गंगापुर सिटी से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो DS पर।

0: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
0: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
2: हर बीच में
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 10:44 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33°C और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश और आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है तुलसीराम मीणा जी की। तुलसीराम मीणा जी ने हमें कॉल किया है पीलूखेड़ा गाँव से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो DS पर।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के हमारे खास मेहमान हैं जिन्होंने हेलो फरमाइश कार्यक्रम में भाग लिया है। पहले नंबर पर हमारे पास कॉल किया सवाई माधोपुर से मोनिका मीणा जी की, दूसरी कॉल हमारे पास आई है चौधरी जी की श्री महावीर जी से, तीसरे नंबर की कॉल हमें प्राप्त हुई है शहनाज खान की संजय कॉलोनी से, चौथे नंबर पर गुलशन खान, पांचवे नंबर पर आरबी गुर्जर की मोतीपुरा गांव से, छह नंबर पर सोहेल सैफी जी गंगापुर सिटी से, सातवें नंबर पर तुलसीराम मीणा जी पीलू खेड़ा से, आठवीं नंबर पर विनीता मीणा जी गंगापुर सिटी से, नौ नंबर पर हमें फरमाइश मिली है ध्रुव मीणा जी की बहू कल से, 10 नंबर पर योगेश जांगिड़ जी विमेत्रा छत्तीसगढ़ से, 11 नंबर पर शादाब खान ईस्ट फरुखाबाद यूपी से, 12 नंबर पर बाबू खान गंगापुर सिटी से, 13 नंबर पर राजू लवानिया जी लखनिया आगरा से, 14 नंबर पर केशव शर्मा जी सुषमा रानी जी जम्मू कश्मीर से, 15 नंबर पर ठंडी राम जी बिदरखा से, 16 नंबर पर बूटा खान जी तलवंडी भटिंडा पंजाब और 17 नंबर पर अभिषेक लोधा गंगापुर सिटी से, 18 नंबर पर कुलदीप मीना गंगापुर सिटी से, 19 नंबर पर मोहम्मद शाहबाज मंसूरी ईस्ट अप फरुखाबाद से, 20 नंबर पर रतनलाल जी महू कला से, 21 नंबर पर दीपक गुर्जर नसिया कॉलोनी से, 22 नंबर पर धीरू भाई ठाकुर महू कला से।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे,
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:54 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है विनीता मीणा जी की। विनीता मीणा जी ने कॉल किया है गंगापुर सिटी से, सुनते हैं की फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:58 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है ध्रुव जी की। ध्रुव जी ने हमें कॉल किया है मऊ कला गंगापुर सिटी से। सुनते हैं इनकी फरमाइश परिगा 99.6 रेडियो DS पर।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।
1: तो कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है योगेश जागीर जी की। योगेश जागीर जी ने हमें कॉल किया है छत्तीसगढ़ से। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो DS पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आइए सादव खान जी की। सादव खान जी ने हमें कॉल किया है फरीदाबाद यूपी से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।
3: राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के हमारे खास मेहमान हैं जिन्होंने हेलो फरमाइश कार्यक्रम में भाग लिया है। पहले नंबर पर हमारे पास कॉल किया सवाई माधोपुर से मोनिका मीणा जी की, दूसरी कॉल हमारे पास आई है चौधरी जी की श्री महावीर जी से, तीसरे नंबर की कॉल हमें प्राप्त हुई है शहनाज खान की संजय कॉलोनी से, चौथे नंबर पर गुलशन खान, पाँचवे नंबर पर RB गुर्जर की मोतीपुरा गाँव से, छह नंबर पर सोहेल सैफी जी गंगापुर सिटी से, सातवें नंबर पर तुलसीराम मीणा जी पीलू खेड़ा से, आठवीं नंबर पर विनीता मीणा जी गंगापुर सिटी से, नौ नंबर पर हमें फरमाइश मिली है ध्रुव मीणा जी की बहू कल से, 10 नंबर पर योगेश जांगिड़ जी विमेत्रा छत्तीसगढ़ से, 11 नंबर पर शादाब खान ईस्ट फरुखाबाद यूपी से, 12 नंबर पर बाबू खान गंगापुर सिटी से, 13 नंबर पर राजू लवानिया जी लखनिया आगरा से, 14 नंबर पर केशव शर्मा जी सुषमा रानी जी जम्मू कश्मीर से, 15 नंबर पर ठंडी राम जी बिदरखा से, 16 नंबर पर बूटा खान जी तलवंडी भटिंडा पंजाब और 17 नंबर पर अभिषेक लोधा गंगापुर सिटी से, 18 नंबर पर कुलदीप मीना गंगापुर सिटी से, 19 नंबर पर मोहम्मद शाहबाज मंसूरी ईस्ट अप फरुखाबाद से, 20 नंबर पर रतनलाल जी महूकला से, 21 नंबर पर दीपक गुर्जर नसिया कॉलोनी से, 22 नंबर पर धीरू भाई ठाकुर महूकला से।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 11:17 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है राजू लवानिया जी की। राजू लवानिया जी ने हमें कॉल किया है आगरा उत्तर प्रदेश से, सुनते इनकी फरमाइश परिगा 89.6 रेडियो DS पर।

0: सूरत आपकी।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है केशव शर्मा सुषमा रानी जी की। केशव शर्मा जी ने हमें कॉल किया है जम्मू कश्मीर से। सुनते हैं की फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर के।
2: दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है ठंडी राम गुजर जी की। ठंडी राम गुजर जी ने हमें कॉल किया विदर्गा गांव से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो DS पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 11:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास ये आई है बूटा सिंह पटंडा पंजाब से। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग
4: 89.6 पे रेडियो डीएस
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6

0: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: वक्त हो चुका है 11:35 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है अभिषेक लोधा जी की। अभिषेक लोधा जी ने हमें कॉल किया है गंगापुर सिटी से। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
3: दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आइए कुलदीप जी की कुलदीप जी ने हमें कॉल किया है गंगापुर सिटी से सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डी

0: हर बीच में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आपका।

0: अपराध है।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
3: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
4: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
4: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्ता शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहार

0: बीच में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 11:51 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है मोहम्मद सहवाग मंसूरी जी की इष्ट यूपी से। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो DS पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: तो कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आइए रतन लाल जी की। रतन लाल जी ने हमें कॉल किया है मऊ कला गंगापुर सिटी से। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का।

0: class 7 sir, studying in 9th class. Before coming in DS, I didn't know about foundation. Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
1: Bachpan Public Secondary School, Gangapur City.
2: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
2: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्ता शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
4: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।

दोस्तों वक्त हो चुका है 12:05 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है दीपक गुजर जी की। दीपक गुजर जी ने हमें कॉल किया है नशिया कॉलोनी गंगापुर सिटी से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाने 89.6 रेडियो DS पर।

दोस्तों, कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है धीरूभाई ठाकुर की। धीरूभाई ठाकुर ने हमें कॉल किया है मऊ कला गंगापुर सिटी से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: रंग बरसे भीगचु नरवा ली रंग बरसे
1: ओ रंग बरसे भीगचु
2: रंग बरसे पीके जुनर वाली रंग बरसे।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
4: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
5: तो कार्यक्रम के अगली फरमाइश हमारे पास आइए समता जादून जी की। समता जादून जी ने हमें कॉल किया है वार्ड कला गंगापुर सिटी से। सुनते हैं उनकी फरमाइश परिगा 99.6 रेडियो डीएस पर।

तो कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है निकिता वर्मा जी की। निकिता वर्मा जी ने हमें कॉल किया है रेलवे स्टेशन गंगापुर सिटी से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो DS पर।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 12:24 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है सजाद खान जी की। सजाद खान जी ने हमें कॉल किया है पुरानी निजामत गंगापुर सिटी से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो DS पर।

तो कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आइए विक्रम गुर्जर जी की। विक्रम गुर्जर जी ने हमें कॉल किया है गंगापुर सिटी से, सुनते इनकी फरमाइश। परिएगा 89.6 रेडियो डीएस।

0: बाहर बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 12:31 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और आप मेरी साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है गुरु लाल सिंह जी की। गुरु लाल सिंह जी ने हमें कॉल किया है बटंडा पंजाब से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है रफीक खान जी की। रफीक खान जी ने हमें कॉल किया है लोको कॉलोनी गंगापुर सिटी से। सुनते हैं इनकी फरमाइश परेगा 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
1: दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है कोमल वर्मा जी की। कोमल वर्मा जी ने हमें कॉल किया है रेलवे स्टेशन गंगापुर सिटी से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल
2: DS89.6।
3: दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आइए सोनू जी की। सोनू जी ने हमें कॉल किया है गंगापुर सिटी से, सुनते इनकी फरमाइश परिगा 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।
1: तो वक्त हो चुका है 12:48 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त हरजी पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस।

दोस्तों कार्यक्रम की लास्ट व अंतिम फरमाइश हमारे पास आई है अरुण सिंह मोनिका वर्मा जी रेलवे स्टेशन से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों अभी आपने सुना हेलो फरवाइज कार्यक्रम, थोड़ी देर में लेकर हाजिर होऊंगा आपका मनपसंद कार्यक्रम नए तराने। चलो दोस्तों नए तराने कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत और सुनते हैं ये प्यारे से ट्रैक के साथ और करेंगे खट्टी मीठी बातें।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 1:26 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नए तरह 89.6 रेडियो डीएस पर।

किथे जा रही है। ए खुदा रे इश्क चरंगी रूह है। ए 12 साल दा सी जदों दी मां फौत हो गई सी, पर यूं लगता वो अज भी इहदे आस पास है, क्योंकि उहदी आखिरी तमन्ना सी कि उहदा पुत मजार दी सेवा करे।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 1:59 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक।

0: स्टॉप करते हैं कार्यक्रम को, इसको यहीं पर ही समाप्त और करते हैं अगले कार्यक्रम की शुरुआत। अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे भूली बिसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। हर बीच में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीच में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे गंगापुर सिटी।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS89.6।
3: रेडियो DS89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त ऋषि मीना की तरफ से DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। OTP पूछना, फर्जी बैंक कॉल, KYC अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, QR कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झांसे से सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना OTP, ATM पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को न बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो DS89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त इशी मीना एवं DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।
4: तो वक्त हो चुका है 2:59 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। और दोस्तों, इस कार्यक्रम को यहीं

दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली ही विसरी यादें। अब थोड़ी देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: छोटे प्यार हो गया यार,
3: मन भी हो गया भाई,
2: एक दूसरे बीच में नहीं आना है।
4: किस्मत अपनी अपनी,

0: लिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। में आप

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, गंगापुर सिटी।
2: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान।
3: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है
4: गुड इवनिंग दोस्तों, बग तो जगह है, 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त हरजी पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों इसी कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे लेके आते हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:08 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम राजस्थानी। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वर।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का और दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों इस कार्यक्रम को यहीं पर ही समाप्त करते हैं और अगला कार्यक्रम लेके आते हैं हेलो फरमाइश थोड़ी ही देर में। दोस्तों कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से। हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने, सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस।
2: हेलो
3: परम माननीय पलक दीदी, सादर सा प्रेम प्यार से नमस्कार।
2: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
3: जी मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति से राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं? आज तो हमारे मथुरा वृंदावन में झमाझम बारिश हुई एक घंटे।
2: सर हमारे यहाँ तो नहीं हो रहा, और मैं तो ठीक हूँ, और आप कैसे हो सर?
3: मैं बहुत अच्छा हूँ, आपका आशीर्वाद बाकी बिहारी कृपा से, घर परिवार सब लोग आनंद से हैं।
2: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: गाने के बोल हैं बरस जा ऐ बादल बरस जा, ये गीत सुना दीजिए।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6।
2: दोस्तों वक्त हो गया है 4:39 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है बाबू खान जी की। बाबू खान जी ने हमें कॉल किया है चूली गेट गंगापुर सिटी से, सुनते हैं इनकी फरमाइश परिगा 99.6 रेडियो डीएस पर।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: नमस्ते पल्लवी जी, चौधरी जी निवेदन कर रहा हूँ मावी जी से।
2: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: गाना बढ़िया लाए जी।
2: हाँ जी सर बताइए।
1: सुबह तो आवाज ही नहीं आई रिकॉर्डिंग वाली।
2: सर रिकॉर्डिंग से नहीं चला था, सुबह अलग प्रोग्राम था।
1: अब बदल लिया क्या?
2: हाँ सर, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बदलते हैं बीच बीच में।
1: चलो लिखो गाना।
2: हाँ जी बताइए।
1: गंगा जैसा मन तेरा।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
0: मैडम जी नमस्ते।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम दिलराज मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: गोली 315।
1: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करेगा ना।
0: धन्यवाद मैडम जी।
1: वेलकम सर।

0: हेलो।
1: हाँ मैम नमस्ते।
0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम रिजा शर्मा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से जी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?

0: हेलो
1: हेलो भाई, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिलुखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: पसंद आ गई है इस काफिर हसीना।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन।
0: यू वेलकम सर।

सा दिलकश जमाल, दरिया की मौजों से बदमस्त चाल, शीशे के सागर सा, शीशे के सागर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 5:01 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आइए कशिश जी की। कशिश जी ने हमें कॉल किया है रेलवे स्टेशन गंगापुर सिटी से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो DS पर।

0: से दिल तक 89.6 DSFM पे। हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 5:03 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आइए। तन्नू जी ने हमें कॉल किया है गंगापुर सिटी से, सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो DS पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, पर ये गाना।
3: हेलो
2: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: मेरा।
2: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे? कौन सा?

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका सर?
0: मेरा नाम है गीत शर्मा जी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो? सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज गाना सुनना चाहते हैं तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: यू
1: वेलकम सर। हेलो।
2: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग
2: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आपका

0: सुनापुर स्थिति की धरकर
1: बस ऐसे ही अमेजिंग गाने सुनने मिलते हैं आपको 89.6 रेडियो डीएस पे। और एक अमेजिंग एक और फैक्ट है, किसी जानवर किसी एनिमल का अगर आपको ब्रेन साइज पता करना है कि उसका दिमाग वाकई में कितना बड़ा है, तो आपको सिर्फ उनके यॉन पे यानी उबासी पे ध्यान देना। जितना लंबा वो यॉन करेंगे उतना बड़ा उनका दिमाग। अगर आपके दोस्त यॉन करते वक्त सिर्फ बस तो समझ लेना कि उनका दिमाग कहीं मत जाना। बैक टू बैक अमेजिंग गाने आपके लिए रेडियो डीएस 89.6 पे
0: गंगापुर सिटी की धरकर रेडियो डीएस।

0: गंगापुर स्थिति की धरकर
1: देखो, कई बार लोग परेशान होते हैं अपने हाइट की वजह से, लेकिन गानों की वजह से कभी परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि आपने ट्यून इन कर रखा रेडियो डीएस 89.6। और हाइट इश्यू रहता है, कई बार लोग कंप्लेन करते हैं, यार मेरी हाइट नहीं है बढ़ रही, मैं लंबा नहीं हो रहा, तो उनके लिए मेरे पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन है कि भैया फैक्ट है कि जितने भी बार एस्ट्रोनॉट्स आसमान में जाते, वो स्पेस में जाते, फिर वो जब वापस धरती पे लौट कर आते हैं तो उनके हाइट में इजाफा होता है, वो 2 से 3 इंच तक लंबे हो जाते हैं। तो अगली बार अगर आपका कोई छोटा दोस्त या आप खुद परेशान हो कि हाइट नहीं बढ़ रही है यार गंगापुर सिटी में, सब मुझे तंग करते, तो एस्ट्रोनॉट बन जाओ। फिलहाल भैया आज का शो यही तक था, फिर कल मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह। इस वक्त अमेजिंग बैक टू बैक कुछ गाने एंजॉय करो 89.6 रेडियो डीएस पे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। आज सफरनामा में मैं बात करने वाली हूं बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार राजेश रोशन की। उन्होंने कभी हमें इमोशनल किया तो कभी हंसाया। आज भी लोगों के दिलों में वो राज कर रहे हैं और बेहतरीन गाने बना रहे हैं। आइए सुनते हैं इनके

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। हम बात कर रहे थे राजेश रोशन जी की। राजेश रोशन जी ने छोटी उम्र में संगीत की बारीकियां सीखनी शुरू की थी। उन्हें शुरू में ये शिक्षा उनकी माँ ने दी, लेकिन बाद में ये शिक्षा वो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी से लेने लगे। कुंवारा बाप के लिए गाना कंपोज किया। गाने के बोल थे सज रही गली, जो इन्होंने 15 किन्नरों के साथ रिकॉर्ड किए थे।

0: है हमारे सवाल का जवाब दो ना, बगैर माँ बाप का बच्चा कहाँ से लाए बोलो ना।
1: मैं मंदिर पहुँचा, एक बच्चा देखा, ना कोई आगे ना कोई पीछे, मैं तरस में आके ले चला उठा के, ये माँ को दे दूं मंदिर में रख दो। पंडे ने देखा वो जालिम समझा, ये पाप है मेरा बस मुझको घेरा। फिर पुलिस आई दी लाख दुहाई, वो एक न माना पड़ गया ले जाना। सोचा ले जाकर फेंकूंगा बाहर, सौ जतन लगाया कोई काम ना आया। सड़कों पर बेचा गाड़ी में फेंका, बन गया ये बंदा इस गले का फंदा। मैं फिर भी टाला कचरे में डाला, फिर बारिश आई अंधियारी छाई, बिजली जब कड़की मेरी छाती धड़की, एक तीर सा लगा मैं वापस भाग।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: फिल्म निर्माता राकेश रोशन की फिल्मों में अमूमन संगीत उनके भाई राजेश रोशन का होता है। रोशन ने भाई राकेश की फिल्मों के अलावा अन्य फिल्मों में भी संगीत दिया है। 1975 में प्रदर्शित जूली फिल्म से उनके करियर की शुरुआत हुई और सफर आज तक जारी है। इस फिल्म में दिल क्या करे जब किसी को, माई हार्ट इज बीटिंग, ये रातें नहीं पुरानी और जूली आई लव यू जैसे गाने में रोशन का संगीत श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। जूली की सफलता के बाद राजेश रोशन को शुरुआत में ही नई पहचान मिल गई थी। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। 70 और 80 के दशक में जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी हिंदी सिनेमा में पूरे शबाब पर थी, उस समय किसी भी नए संगीतकार को हिंदी सिनेमा में स्थापित होना आसान नहीं था। 1975 में KS सेतु माधवन के निर्देशन में बनी फिल्म जूली ने राजेश को हिंदी सिनेमा में पूरी तरह स्थापित कर दिया। इस फिल्म के संगीत की खूब तारीफ हुई और राजेश रोशन को इस साल के फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का खिताब भी मिला। ये पुरस्कार राजेश रोशन ने एक बार फिर साल 2000 में फिल्म कहो ना प्यार है के लिए जीता। सफरनामे में आज इतना ही, अगली बार फिर आपसे मिलूंगी 89.6 DSFM पे। मैं तनिषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: करते हैं
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।